0: ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। और अब कुछ मजीद खबरें। अमरीका और ईरान मफाहमत की याददाश्त के जरिए तय की गई 60 दिन की बातचीत की मुद्दत खत्म होने के बाद भी लड़ाई खत्म करने के मकसद से बहुत दूर हैं। दोनों ममालिक ने जून में मस्कूरा याददाश्त पर दस्तखत किए थे। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि ये मुद्दत 18 जून को शुरू हुई, जिसका मतलब यह है कि बातचीत की मुद्दत इतवार को खत्म हो गई। बातचीत के मौजूदात में अमरीका की जानिब से समंदरी नाकाबंदी का खात्मा, आबनाए हरमूज में बहरी जहाजों की आमदोरफ्त बहाल करना, ईरान का जौहरी प्रोग्राम और पाबंदियों का खात्मा शामिल था। दोनों ममालिक ने मुजाकरात के टाइम फ्रेम के दौरान एक दूसरे पर हमले जारी रखे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराकची ने कहा कि दोनों फरीकों के दरमियान कभी जंगबंदी नहीं हुई जिसमें तौसी की जरूरत हो। तेहरान ने आबनाए हुरमोस को दोबारा खोलने के लिए 6 शराइत पेश की हैं, जिनमें ईरान पर पाबंदियां खत्म करना, फौजी कार्रवाइयों से होने वाले नुकसान का मुआवजा और अमरीकी समंदरी नाकाबंदी का खात्मा शामिल है। अमरीका ने 7 जुलाई को ऐलान किया था कि उसने ईरानी तेल की फरोख्त की इजाजत देने वाला लाइसेंस मनसूख कर दिया है और 14 जुलाई को समंदरी नाकाबंदी दोबारा शुरू कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 8 जुलाई को सहाफियों को बताया था कि उनके ख्याल में जंगबंदी खत्म हो गई है। इंडोनेशिया के हुकाम का कहना है कि मुल्क के मशरकी हिस्से में हफ्ते के रोज आने वाले जलजले के नतीजे में 53 अफराद की हलाकत की तस्दीक हुई। फ्लोरेस जजीरे पर मैग्नीच्यूड 7.0 के जलजले से 200 से जायद मकानात को भी नुकसान पहुंचा था। डिजास्टर मैनेजमेंट के अहलकारों ने हलाक होने वालों की तादाद का ऐलान इतवार के रोज किया। हुकाम जलजले के मरकज के करीबी इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों को तेज कर रहे हैं, जहां सड़कें मुनकता हो गई हैं। मकानात को नुकसान पहुंचने के बाद 5,000 से जायद अफराद को नकल मकानी करना पड़ी। खुराक, पानी, कंबल और दीगर इमदादी सामान की फरहमी इंतहाई अहम हो गई है। इंडोनेशिया की हकूमत का कहना है कि उसने हफ्ते की रात तक मुतअद्दिद इलाकों में 27 टन सामान पहुंचाने के लिए तैयारे भेजे हैं। हुकूमत का मजीद कहना है कि उसने 3,500 से जायद फौजी अहलकार और पुलिस अफसरान को खित्ते में भेज दिया है। एक मकबूल जापानी हफ्त रोजा मांगा मैगजीन की सर्कुलेशन पहली बार 10 लाख से नीचे आ गई है। शुए शाह के हफ्त रोजा शोनेन जम की सर्कुलेशन कभी 65 लाख तक पहुंची थी। जापान मैगजीन पब्लिशर्स एसोसिएशन के जारी करदा आदाद शुमार से जाहिर होता है कि जून तक की 3 माह की मुद्दत में इस जरीदे की औसत प्रिंट सर्कुलेशन 9,85,000 कापियां फी शुमारा रही। ये आदाद शुमार अब भी मकामी जराइद में सबसे बुलंद है, लेकिन 2008 में एसोसिएशन के आदाद शुमार जमा करना शुरू करने के बाद ये पहला मौका है कि हफ्त रोजा शोनेन जंप की अशाद 10 लाख से नीचे चली गई। इसका मतलब है कि जापान में अब कोई तबाती जरीदा ऐसा नहीं है जिसकी सर्कुलेशन 10 लाख से ज्यादा हो। 1968 में अपने आगाज के बाद से मकबूल मांगा सीरीज हफ्त रोजा शोनेन जंप की मांग में मुसलसल इजाफा हुआ था। इसका अरूज 1994 में 65,30,000 कापियां था, लेकिन दीगर जराइद की तरह हालिया बरसों में इसकी प्रिंट सर्कुलेशन में भी कमी आई है।
1: और सामईन, आखिर में आज की अहम खबरों का खुलासा। टोक्यो के मशिक में वाक़ चीबा प्रीफेक्चर में हुकाम ने कहा है कि रिकॉर्ड शदीद बारिशों के बाद एक और शख्स की हलाकत की तस्दीक हुई है, जिसके बाद हलाक होने वालों की तादाद अब 10 हो गई है। अमरीका और जनूबी कोरिया ने पीर के रोज़ अपनी बाकायदा मुश्तरका फौजी मशकों का आगाज कर दिया है, जिसका मकसद जजीरा नुमा कोरिया में किसी हंगामी सूरतेहाल के लिए तैयारी करना है। इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें ख़त्म हुईं।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 18 अगस्त मंगलवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला खावानों से सुने समाचार। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौते पर पहुंचने की 60 दिन की समय सीमा समाप्त हो रही है और ऐसे में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को जमकर लताड़ते हुए मीडिया से कहा कि उन्हें जल्दी नहीं है और उनके पास कोई समय सारिणी नहीं है। ट्रंप ने सोमवार को फॉक्स न्यूज़ को दिए टेलीफोन साक्षात्कार में ये टिप्पणी की। उन्होंने होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर ईरान के साथ वार्ता कर रहे ओमान को भी चेतावनी दी। ट्रंप ने ओमान को धमकी देते हुए कहा कि अगर वो बाधा डालेगा तो उस पर भी बमबारी की जाएगी। ट्रंप ने यह दावा भी किया कि अमेरिका ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC के साथ गुप्त माध्यम से बातचीत कर रहा है, लेकिन ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी की एक खबर ट्रंप के बयानों का खंडन करती है। इसमें IRGC के एक प्रवक्ता के हवाले से ट्रंप के प्रत्यक्ष वार्ता के दावे को खारिज करते हुए इसे उनकी कल्पना बताया गया है। उधर रॉयटर्स ने एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी के हवाले से बताया कि अगर अमेरिका कुछ ही हफ्तों में अंतरिम शांति समझौता लागू करने में विफल रहा तो ईरान हमले शुरू कर सकता है। अधिकारी ने चेतावनी दी कि ईरान अब अपनी नीति को रक्षात्मक से पूरी तरह आक्रामक बना रहा है और जलडमरू मध्य तथा व्यापक क्षेत्र में तनाव बढ़ाने के लिए तैयार है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का कहना है कि रूस के नियंत्रण वाले 4 द्वीपों में से एक की राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हालिया यात्रा पर जापान की ओर से आपत्ति जताए जाने के बाद उन्होंने रूस में मौजूद जापानी राजदूत को तलब किया था। गौरतलब है कि जापान इन द्वीपों पर अपना दावा करता है। लावरोव ने सोमवार को पत्रकारों से कहा कि जापान ने पूरी तरह से अस्वीकार्य बयान दिया है कि रूसी राष्ट्रपति रूसी क्षेत्र का दौरा नहीं कर सकते। जापान में इन द्वीपों को उत्तरी क्षेत्र कहा जाता है। जापान सरकार अपने रुख पर कायम है कि ये द्वीप जापानी भूभाग का अभिन्न अंग हैं। सरकार का कहना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन द्वीपों पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था। बृहस्पतिवार को जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची सानाई ने बल देते हुए कहा था कि ऐतिहासिक तथ्यों और अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर ये द्वीप जापानी भूभाग का अभिन्न अंग हैं। उन्होंने कहा था कि पुतिन की यात्रा इन द्वीपों पर जापान सरकार के निरंतर रुख से मेल नहीं खाती। जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु ने विरोध दर्ज कराने के लिए रूसी राजदूत निकोलाई नोजद्रेव को तलब किया था। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूत और दामाद जेरेड कुशनर हाल ही में गाजा के हालात को लेकर हमास और इसराइल के नेताओं से मुलाकात करते आए हैं। उन्होंने सोमवार को इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। इजरायली समाचार पत्र हारेट्स के अनुसार यरूशलम में हुई ये बैठक 3 घंटे चली। समाचार पत्र के अनुसार बैठक में शांति मंडल के सदस्य भी शामिल हुए। ये मंडल एक बहुराष्ट्रीय इकाई है जिसे ट्रंप ने गाजा में सत्ता हस्तांतरण की देखरेख के लिए गठित किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार नेतन्याहू और शांति मंडल के बीच गहन और रचनात्मक चर्चा हुई। कार्यालय ने बताया कि वे गाजा के निरस्त्रीकरण और विसैन्यीकरण पर एक समूह सहित कई कार्यकारी दल गठित करने पर सहमत हुए हैं। पिछले महीने शांति मंडल ने हमास के निरस्त्रीकरण और इजरायली सैनिकों की वापसी के संबंध में एक रूपरेखा जारी की थी, लेकिन नेतन्याहू ने जोर दिया कि जब तक हमास का पूर्ण निरस्त्रीकरण नहीं हो जाता तब तक इजरायली सेना वापस नहीं हटेगी। कुशनर ने एक दिन पहले मिस्र में हमास के मौजूदा नेता खलील अलहैया से भी मुलाकात की थी। बाद में ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को बताया कि इजरायल को गाजा पर हमला नहीं करना चाहिए क्योंकि हमास हथियार डालने पर राजी हो गया है।

ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने उनके वार्ता के अनुरोध पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। ट्रंप ने सोमवार को व्हाइट हाउस में पत्रकारों के साथ मुलाकात में ये टिप्पणी की, लेकिन उन्होंने विवरणों का खुलासा नहीं किया। दक्षिण कोरिया के संबंध में ट्रंप ने असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि दक्षिण कोरिया ने ईरान के मामले में अमरीका की मदद करने से इनकार किया। ट्रंप ने बताया कि उन्होंने दक्षिण कोरिया से कहा था कि अमरीका किम जोंग उन से आपकी रक्षा कर रहा है। ट्रंप ने ये भी कहा कि यह अजीब है कि दक्षिण कोरिया ईरान पर सैन्य कार्रवाई में अमरीका की मदद नहीं कर रहा है। रविवार को ट्रंप ने कहा कि दक्षिण कोरिया के साथ संयुक्त सैन्याभ्यास उत्तर कोरिया को पूरी तरह से अनुचित और शत्रुतापूर्ण संकेत भेजता है। ट्रंप ने यह भी बताया कि उन्होंने पेंटागन को अगले दिन से शुरू होने वाले संयुक्त अभ्यासों का पैमाना काफी हद तक कम करने का आदेश दिया था। जब उनसे पूछा गया कि वे उन आलोचकों को कैसे जवाब देंगे जो कह रहे हैं कि ट्रंप पुराने सहयोगियों के हितों की बजाय विरोधियों के हितों को प्राथमिकता दे रहे हैं, तो इस पर ट्रंप ने बल देते हुए कहा कि वे माहौल को अधिक सुरक्षित बना रहे हैं। जापान के दक्षिण पश्चिमी प्रीफेक्चर कुमामोतो में आए भीषण भूकंप के 3 सप्ताह बाद भी 3,000 से अधिक लोग आश्रय स्थलों में हैं, जबकि कई अपनी कारों या क्षतिग्रस्त मकानों में रह रहे हैं। 28 जुलाई के भूकंप की तीव्रता जापान के भूकंप मापी पैमाने पर सर्वोच्च 7 थी। सोमवार दोपहर 2 बजे तक मृतकों की संख्या 39 थी, जिनमें आपदा संबंधी कारणों से मरने वाले लोग भी शामिल हैं। भूकंप से 31,951 मकान क्षतिग्रस्त हो गए और इनमें से 1,449 पूरी तरह नष्ट हो गए हैं। 70 निर्धारित आश्रय स्थलों में अब भी 3,000

0: 53 लोग रह रहे हैं। अन्य जगहों पर शरण ले रहे निवासियों की संख्या का पता लगाना कठिन है, जिससे ये चिंता बढ़ रही है कि सहायता की कमी से और अधिक लोगों की मौत हो सकती है। प्रीफेक्चर सरकार नगर पालिकाओं से ऐसे निवासियों के बारे में जानकारी देने का अनुरोध कर रही है, ताकि सहायता प्रदान की जा सके। सबसे अधिक प्रभावित शहरों उकी और यात्सुशिरो तथा हिकावा नगर में लगभग 7,380 मकानों में पानी नहीं आ रहा है, लेकिन उम्मीद है कि अगस्त अंत तक जलापूर्ति बहाल हो जाएगी।
1: इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
2: ये है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11,655 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें एनएचके वर्ल्ड जापान।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 25वें पाठ में अपनी तबीयत के बारे में बताना सीखेंगे।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम हारूसान हाउस में रहती है। वो बैठक में आराम कर रही है, लेकिन लगता है कुछ गड़बड़ है।
0: तो आइए सुनते हैं 25वें पाठ की बातचीत।
2: तामेसान, काओइरो गा वारुई देसु यो। दोशितान देसु का?
3: नोदो गा इताई देसु।
2: ओया ओया, सोन्ना तोकी नी वा शोगा हाचिमित्सु यू गा इई देसु यो।
3: काइटो गा इमा त्सुकुत्ते इमासु।
4: तामेसान, देकिता यो। हाई, दोज़ो।
3: ओ दाइजी नी।
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: हारूजी में लगे सेंसर ने भांप लिया कि कुछ गड़बड़ है और उनके गालों पर हल्की नीली रोशनी टिमटिमाने लगी। तो हारूजी ने ताम से पूछा,
2: तामेसान, काओइरो गा वारुई देसु यो।
1: ताम जी, चेहरा मुरझाया हुआ लग रहा है।
2: दोशितान देसु का?
1: क्या हुआ?
0: ताम ने खांसते हुए जवाब दिया,
3: नोदो गा इताई देसु,
1: गले में दर्द है।
0: तब हारूजी ने कहा,
2: ओया ओया।
1: ओ,
0: फिर हारूजी ने ताम को सलाह दी,
2: सोन्ना तोकी नी वा शोगा हाचिमित्सु यू गा इई देसु यो।
1: ऐसे समय में अदरक और शहद वाला गर्म पानी अच्छा रहता है।
0: उसके बाद मिया ने कहा,
3: काइटो गा इमा त्सुकुत्ते इमासु।
1: काइटो अभी बना रहा है।
0: फिर काइटो ताम के लिए अदरक और शहद वाला गर्म पानी लेकर आया।
4: तामसान, देखता यो।
0: ताम बन गया।
4: हाई, दोज़ो।
0: ये लो।
1: उसके बाद मिया ने ताम से कहा,
3: ओ दाइजी नी,
1: अपना ध्यान रखो।
0: अदरक और शहद वाला गर्म पानी बनाने के लिए कद्दूकस किए हुए अदरक को शहद के साथ गर्म पानी में मिलाया जाता है। ये माना जाता है कि इसे पीने से गले के दर्द और खांसी से राहत मिलती है। इसे पीकर ताम को अच्छा लगेगा।
1: आज का मुख्य वाक्य है,
3: नोदो गा इताई देसु,
1: यानी गले में दर्द है। ये वाक्य सीखकर आप तबीयत खराब होने पर अपनी परेशानी बता सकेंगे।
0: इस वाक्य में
5: नोदो
0: का अर्थ है गला। उसके बाद लगा है गा, जो उस अंग के नाम के बाद लगाया जाता है जिसमें दर्द हो।

0: और
1: इताइंडेस
0: का मतलब होता है दर्द है।
2: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात ये है कि
1: इताइंडेस
2: के अंत में लगे
1: डेस
2: का उपयोग अपनी बात समझाते समय किया जाता है। इसलिए किसी को अपनी तबीयत के बारे में बताते समय भी वाक्य के अंत में लगाते हैं
1: डेस इताइंडेस।
0: में पहले आया है ई विशेषण
1: इताई
0: यानी दर्द होना और उसके बाद लगा है
1: डेस।
0: आज की बातचीत में ताम इस वाक्य की मदद से हारूजी को अपनी परेशानी समझा रही है।
2: तो आप भी सुनिए और साथ साथ बोलकर उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
1: इताइंडेस नोदो गा इताइंडेस।
0: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें कोई अपनी तबीयत के बारे में बता रहा है।
3: どうしたんですか？
4: 頭が痛いんです。熱があるんです。
2: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ।
0: पहले महिला ने कहा
3: どうしたんですか？
2: क्या हुआ?
0: कोई परेशान दिख रहा हो तो उसकी समस्या पूछने के लिए इस वाक्य का उपयोग करते हैं। ये पूरा वाक्य एक साथ याद कर लीजिए।
2: जवाब में पुरुष ने कहा
4: आतामा का इताइन दिस।
0: सिर में दर्द है।
1: आतामा
2: का मतलब है सिर, इसलिए
1: आतामा का इताई
2: का मतलब हुआ सिर में दर्द है। पुरुष ने आगे कहा
4: नेत्स गा आरुन दिस।
0: बुखार है।
1: नेत्स
2: का अर्थ है बुखार और
1: आरु
2: एक क्रिया है जिसका अर्थ है होना। तो
1: नेत्सु गा आरु
2: का मतलब है बुखार होना। इस वाक्य से आप समझ सकते हैं कि
1: डेस
2: विशेषणों के ही नहीं क्रियाओं के बाद भी लग सकता है।
0: तो अब ये बातचीत सुन लीजिए और उत्तर दोहरा कर अभ्यास कीजिए।
1: どうしたんですか?頭が痛いんです。熱があるんです。
2: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपके पेट में दर्द है, तो ये बात जापानी भाषा में कैसे कहेंगे? पेट के लिए जापानी शब्द है
1: ओनाका
2: और दर्द को जापानी भाषा में कहते हैं
1: इताई।
2: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
3: ओनाका गा इताई देस। ओनाका गा इताई देस।
0: अब मान लीजिए कि बहुत देर तक किसी वाहन में बैठे बैठे आपको आपकी तबीयत खराब लग रही है। तबीयत खराब लगना को जापानी में कहते हैं
1: किमोची गा वारुई।
0: तो अपनी बात जापानी भाषा में समझाने की कोशिश कीजिए।
4: किमोची गा वारुई देस। किमोची गा वारुई देस।
2: और अब बारी है आज के सहज वाक्य की जो मिया की पंक्ति है। आप भी याद कर लीजिए।
5: ओदाइजिनी।
1: ओदाइजिनी
0: का अर्थ है अपना ध्यान रखो। अगर कोई बीमार हो या किसी को कोई चोट लगी हो तो आप फिक्र दिखाने के लिए इस वाक्य का उपयोग कर सकते हैं। इससे आप ये आशा व्यक्त कर सकते हैं कि वो व्यक्ति आराम करके जल्दी ठीक हो जाए।
2: अब इस वाक्य को विभिन्न लोगों की आवाजों में सुनते हैं।
6: お大事に。
7: お大事に。
8: お大事に。
0: और अब एक बार फिर से सुन लेते हैं आज की बातचीत।
9: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
5: 喉が痛いんです。
9: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
5: カイトが今作っています。
10: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
5: お大事に。
9: ハルさんの知恵袋。
2: अब बारी है हमारे अंश हारूजी की सलाह की। जिसमें आज हम बता रहे हैं कि अगर आप जापान में बीमार हो जाएं तो क्या कर सकते हैं।
0: जापान में बीमार होने पर क्या करना चाहिए, ये इस बात पर निर्भर करता है कि बीमारी के लक्षण क्या हैं।
2: अगर लक्षण गंभीर ना हो तो आप किसी भी दवा खाने या फार्मेसी से दवाई ले सकते हैं। वहाँ दुकानदार को अपनी परेशानी बताने पर वो आपको सही दवाई दे देगा। तो दवा खाने जाइए और दुकानदार से कहिए, पेट में दर्द है या बुखार है। ऐसा करने पर आपको बिना पर्ची के दी जा सकने वाली दवा मिल जाएगी।
0: लेकिन अगर डॉक्टर के पास जाना हो तो आपको किसी चिकित्सालय या अस्पताल जाना होगा। विदेशी पर्यटकों को चिकित्सा देखभाल उपलब्ध करवाने वाले चिकित्सा संस्थानों की सूची जापान राष्ट्रीय पर्यटन संगठन यानी JNTO की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। वेबसाइट तक पहुंचने के लिए आप फॉर सेफ ट्रेवल्स इन जापान JNTO शब्द से सर्च कर सकते हैं। इसे बुकमार्क कर लीजिएगा।
2: इसके अलावा पास के अस्पताल या चिकित्सालय का पता लगाने के लिए आप पर्यटन केंद्र या होटल के रिसेप्शन पर भी पूछ सकते हैं और आपात स्थिति में फोन पर 119 दबाकर एम्बुलेंस बुला सकते हैं।
0: लेकिन हम ये कामना करते हैं कि जापान में यात्रा करते समय आपको कभी भी इन सुविधाओं की जरूरत ना पड़े।
2: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में ताम अपने दोस्तों के साथ साकुरा यानी चेरी के फूल देखने जाएंगी। तब तक के लिए सायोनारा।

ये NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 18 अगस्त मंगलवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला खवानो से सुने समाचार। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौते पर पहुंचने की 60 दिन की समय सीमा समाप्त हो रही है और ऐसे में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को जमकर लताड़ते हुए मीडिया से कहा कि उन्हें जल्दी नहीं है और उनके पास कोई समय सारिणी नहीं है। ट्रंप ने सोमवार को फॉक्स न्यूज़ को दिए टेलीफोन साक्षात्कार में ये टिप्पणी की। उन्होंने होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर ईरान के साथ वार्ता कर रहे ओमान को भी चेतावनी दी। ट्रंप ने ओमान को धमकी देते हुए कहा कि अगर वो बाधा डालेगा तो उस पर भी बमबारी की जाएगी। ट्रंप ने यह दावा भी किया कि अमेरिका ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC के साथ गुप्त माध्यम से बातचीत कर रहा है, लेकिन ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी की एक खबर ट्रंप के बयानों का खंडन करती है। इसमें IRGC के एक प्रवक्ता के हवाले से ट्रंप के प्रत्यक्ष वार्ता के दावे को खारिज करते हुए इसे उनकी कल्पना बताया गया है। उधर रॉयटर्स ने एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी के हवाले से बताया कि अगर अमेरिका कुछ ही हफ्तों में अंतरिम शांति समझौता लागू करने में विफल रहा तो ईरान हमले शुरू कर सकता है। अधिकारी ने चेतावनी दी कि ईरान अब अपनी नीति को रक्षात्मक से पूरी तरह आक्रामक बना रहा है और जलडमरू मध्य तथा व्यापक क्षेत्र में तनाव बढ़ाने के लिए तैयार है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का कहना है कि रूस के नियंत्रण वाले 4 द्वीपों में से एक की राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हालिया यात्रा पर जापान की ओर से आपत्ति जताए जाने के बाद उन्होंने रूस में मौजूद जापानी राजदूत को तलब किया था। गौरतलब है कि जापान इन द्वीपों पर अपना दावा करता है। लावरोव ने सोमवार को पत्रकारों से कहा कि जापान ने पूरी तरह से अस्वीकार्य बयान दिया है कि रूसी राष्ट्रपति रूसी क्षेत्र का दौरा नहीं कर सकते। जापान में इन द्वीपों को उत्तरी क्षेत्र कहा जाता है। जापान सरकार अपने रुख पर कायम है कि ये द्वीप जापानी भूभाग का अभिन्न अंग हैं। सरकार का कहना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन द्वीपों पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था। बृहस्पतिवार को जापान की प्रधानमंत्री ताकायची सानाई ने बल देते हुए कहा था कि ऐतिहासिक तथ्यों और अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर ये द्वीप जापानी भूभाग का अभिन्न अंग हैं। उन्होंने कहा था कि पुतिन की यात्रा इन द्वीपों पर जापान सरकार के निरंतर रुख से मेल नहीं खाती। जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु ने विरोध दर्ज कराने के लिए रूसी राजदूत निकोलाई नोजद्रेव को तलब किया था। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूत और दामाद जेरेड कुशनर हाल ही में गाजा के हालात को लेकर हमास और इसराइल के नेताओं से मुलाकात करते आए हैं। उन्होंने सोमवार को इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। इजरायली समाचार पत्र हारेट्स के अनुसार यरूशलम में हुई ये बैठक 3 घंटे चली। समाचार पत्र के अनुसार बैठक में शांति मंडल के सदस्य भी शामिल हुए। ये मंडल एक बहुराष्ट्रीय इकाई है जिसे ट्रंप ने गाजा में सत्ता हस्तांतरण की देखरेख के लिए गठित किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार नेतन्याहू और शांति मंडल के बीच गहन और रचनात्मक चर्चा हुई। कार्यालय ने बताया कि वे गाजा के निरस्त्रीकरण और विसैन्यीकरण पर एक समूह सहित कई कार्यकारी दल गठित करने पर सहमत हुए हैं। पिछले महीने शांति मंडल ने हमास के निरस्त्रीकरण और इजरायली सैनिकों की वापसी के संबंध में एक रूपरेखा जारी की थी, लेकिन नेतन्याहू ने जोर दिया कि जब तक हमास का पूर्ण निरस्त्रीकरण नहीं हो जाता तब तक इजरायली सेना वापस नहीं हटेगी। कुशनर ने एक दिन पहले मिस्र में हमास के मौजूदा नेता खलील अलहैया से भी मुलाकात की थी। बाद में ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को बताया कि इजरायल को गाजा पर हमला नहीं करना चाहिए क्योंकि हमास हथियार डालने पर राजी हो गया है।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने उनके वार्ता के अनुरोध पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। ट्रंप ने सोमवार को व्हाइट हाउस में पत्रकारों के साथ मुलाकात में ये टिप्पणी की, लेकिन उन्होंने विवरणों का खुलासा नहीं किया। दक्षिण कोरिया के संबंध में ट्रंप ने असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि दक्षिण कोरिया ने ईरान के मामले में अमरीका की मदद करने से इनकार किया। ट्रंप ने बताया कि उन्होंने दक्षिण कोरिया से कहा था कि अमरीका किम जोंग उन से आपकी रक्षा कर रहा है। ट्रंप ने यह भी कहा कि यह अजीब है कि दक्षिण कोरिया ईरान पर सैन्य कार्रवाई में अमरीका की मदद नहीं कर रहा है। रविवार को ट्रंप ने कहा कि दक्षिण कोरिया के साथ संयुक्त सैन्याभ्यास उत्तर कोरिया को पूरी तरह से अनुचित और शत्रुतापूर्ण संकेत भेजता है। ट्रंप ने यह भी बताया कि उन्होंने पेंटागन को अगले दिन से शुरू होने वाले संयुक्त अभ्यासों का पैमाना काफी हद तक कम करने का आदेश दिया था। जब उनसे पूछा गया कि वे उन आलोचकों को कैसे जवाब देंगे जो कह रहे हैं कि ट्रंप पुराने सहयोगियों के हितों की बजाय विरोधियों के हितों को प्राथमिकता दे रहे हैं, तो इस पर ट्रंप ने बल देते हुए कहा कि वे माहौल को अधिक सुरक्षित बना रहे हैं। जापान के दक्षिण पश्चिमी प्रीफेक्चर कुमामोतो में आए भीषण भूकंप के 3 सप्ताह बाद भी 3,000 से अधिक लोग आश्रय स्थलों में हैं, जबकि कई अपनी कारों या क्षतिग्रस्त मकानों में रह रहे हैं। 28 जुलाई के भूकंप की तीव्रता जापान के भूकंप मापी पैमाने पर सर्वोच्च 7 थी। सोमवार दोपहर 2 बजे तक मृतकों की संख्या 39 थी, जिनमें आपदा संबंधी कारणों से मरने वाले लोग भी शामिल हैं। भूकंप से 31,951 मकान क्षतिग्रस्त हो गए और इनमें से 1,449 पूरी तरह नष्ट हो गए हैं। 70 निर्धारित आश्रय स्थलों में अब भी 3,053 लोग रह रहे हैं। अन्य जगहों पर शरण ले रहे निवासियों की संख्या का पता लगाना कठिन है, जिससे ये चिंता बढ़ रही है कि सहायता की कमी से और अधिक लोगों की मौत हो सकती है। प्रीफेक्चर सरकार नगर पालिकाओं से ऐसे निवासियों के बारे में जानकारी देने का अनुरोध कर रही है ताकि सहायता प्रदान की जा सके। सबसे अधिक प्रभावित शहरों उकी और यात्सुशिरो तथा हिकावा नगर में लगभग 7,380 मकानों में पानी नहीं आ रहा है, लेकिन उम्मीद है कि अगस्त अंत तक जलापूर्ति बहाल हो जाएगी। इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
1: ये है एन

के वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।

0: NHK World जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 25वें पाठ में अपनी तबीयत के बारे में बताना सीखेंगे।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम हारूसान हाउस में रहती है। वो बैठक में आराम कर रही है, लेकिन लगता है कुछ गड़बड़ है।
0: तो आइए सुनते हैं 25वें पाठ की बातचीत।
2: तामसान, काओइरो गा वारुई देसु यो। दोउ शितान देसु का?
3: नोदो गा इताई न देसु।
2: ओया ओया, सोन्ना तोकी नी वा शोगा हाचिमित्सु यू गा इई देसु यो।
3: काइतो गा इमा त्सुकुत्ते इमासु।
4: तामसान, देकिता यो। हाई, दोउज़ो।
3: ओ दाइजी नी।
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: हारूजी में लगे सेंसर ने भांप लिया कि कुछ गड़बड़ है और उनके गालों पर हल्की नीली रोशनी टिमटिमाने लगी। तो हारूजी ने ताम से पूछा,
2: तामसान, काओइरो गा वारुई देसु यो।
1: ताम जी, चेहरा मुरझाया हुआ लग रहा है।
2: दोउशितान देसु का?
1: क्या हुआ?
0: ताम ने खांसते हुए जवाब दिया,
3: नोदो गा इताई न देसु,
1: गले में दर्द है।
0: तब हारूजी ने कहा,
2: ओया ओया।
1: ओ,
0: फिर हारूजी ने ताम को सलाह दी,
2: सोन्ना तोकी नी वा शोगा हाचिमित्सु यू गा इई देसु यो।
1: ऐसे समय में अदरक और शहद वाला गर्म पानी अच्छा रहता है।
0: उसके बाद मिया ने कहा,
3: काइतो गा इमा त्सुकुत्ते इमासु।
1: काइतो अभी बना रहा है।
0: फिर काइतो ताम के लिए अदरक और शहद वाला गर्म पानी लेकर आया।
4: तामसान, देखता यो।
0: ताम बन गया।
4: हाई, दोज़ो।
0: ये लो।
1: उसके बाद मिया ने ताम से कहा,
3: ओदाइजिनी,
1: अपना ध्यान रखो।
0: अदरक और शहद वाला गर्म पानी बनाने के लिए कद्दूकस किए हुए अदरक को शहद के साथ गर्म पानी में मिलाया जाता है। ये माना जाता है कि इसे पीने से गले के दर्द और खांसी से राहत मिलती है। इसे पीकर ताम को अच्छा लगेगा।
1: आज का मुख्य वाक्य है,
3: नोदो गा इताई न देसु,
1: यानी गले में दर्द है। ये वाक्य सीखकर आप तबीयत खराब होने पर अपनी परेशानी बता सकेंगे।
0: इस वाक्य में
5: नोदो
0: का अर्थ है गला। उसके बाद लगा है गा, जो उस अंग के नाम के बाद लगाया जाता है जिसमें दर्द हो, और
5: इताई न देसु
0: का मतलब होता है दर्द है।
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात ये है कि
5: इताई न देसु
1: के अंत में लगे
5: देसु
1: का उपयोग अपनी बात समझाते समय किया जाता है। इसलिए किसी को अपनी तबीयत के बारे में बताते समय भी वाक्य के अंत में लगाते हैं
5: देसु। इताई न देसु
0: में पहले आया है ई विशेषण,
5: इताई
0: यानी दर्द होना, और उसके बाद लगा है
5: देसु।
0: आज की बातचीत में ताम इस वाक्य की मदद से हारूजी को अपनी परेशानी समझा रही है।
1: तो आप भी सुनिए और साथ साथ बोलकर उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
5: इताई न देसु।

0: 喉が痛いんです。
1: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें कोई अपनी तबीयत के बारे में बता रहा है।
2: どうしたんですか？
3: 頭が痛いんです。熱があるんです。
4: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ।
1: पहले महिला ने कहा,
2: どうしたんですか？
4: क्या हुआ?
1: कोई परेशान दिख रहा हो तो उसकी समस्या पूछने के लिए इस वाक्य का उपयोग करते हैं। ये पूरा वाक्य एक साथ याद कर लीजिए।
4: जवाब में पुरुष ने कहा,
3: अतामा का इताइन देस।
1: सिर में दर्द है।
0: अतामा
4: का मतलब है सिर, इसलिए
0: अतामा का इताई
4: का मतलब हुआ सिर में दर्द है। पुरुष ने आगे कहा,
3: नेत्स गा आरुन देस।
1: बुखार है।
0: नेत्स
4: का अर्थ है बुखार और
0: आरु
4: एक क्रिया है जिसका अर्थ है होना। तो
0: नेत्स गा आरु
4: का मतलब है बुखार होना। इस वाक्य से आप समझ सकते हैं कि
0: देस
4: विशेषणों के ही नहीं क्रियाओं के बाद भी लग सकता है।
1: तो अब ये बातचीत सुन लीजिए और उत्तर दोहरा कर अभ्यास कीजिए।
0: どうしたんですか? 頭が痛いんです。熱があるんです。
4: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपके पेट में दर्द है, तो ये बात जापानी भाषा में कैसे कहेंगे? पेट के लिए जापानी शब्द है
0: ओनाका
4: और दर्द को जापानी भाषा में कहते हैं
0: इताई।
4: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
2: ओनाका गा इताई देस। ओनाका गा इताई देस।
1: अब मान लीजिए कि बहुत देर तक किसी वाहन में बैठे बैठे आपको आपकी तबीयत खराब लग रही है। तबीयत खराब लगना को जापानी में कहते हैं
0: किमोची गा वारुई।
1: तो अपनी बात जापानी भाषा में समझाने की कोशिश कीजिए।
3: किमोची गा वारुई देस। किमोची गा वारुई देस।
4: और अब बारी है आज के सहज वाक्य की जो मिया की पंक्ति है। आप भी याद कर लीजिए।
5: ओदाइजिनी।
0: ओदाइजिनी
1: का अर्थ है अपना ध्यान रखो। अगर कोई बीमार हो या किसी को कोई चोट लगी हो तो आप फिक्र दिखाने के लिए इस वाक्य का उपयोग कर सकते हैं। इससे आप ये आशा व्यक्त कर सकते हैं कि वो व्यक्ति आराम करके जल्दी ठीक हो जाए।
4: अब इस वाक्य को विभिन्न लोगों की आवाजों में सुनते हैं।
6: お大事に。
7: お大事に。
8: お大事に。
1: और अब एक बार फिर से सुन लेते हैं आज की बातचीत。
9: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
5: 喉が痛いんです。
9: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
5: カイトが今作っています。
10: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
5: お大事に。
9: ハルさんの知恵袋。
4: अब बारी है हमारे अंश हारू जी की सलाह की, जिसमें आज हम बता रहे हैं कि अगर आप जापान में बीमार हो जाएं तो क्या कर सकते हैं।
1: जापान में बीमार होने पर क्या करना चाहिए, ये इस बात पर निर्भर करता है कि बीमारी के लक्षण क्या हैं।
4: अगर लक्षण गंभीर ना हो तो आप किसी भी दवा खाने या फार्मेसी से दवाई ले सकते हैं। वहाँ दुकानदार को अपनी परेशानी बताने पर वो आपको सही दवाई दे देगा। तो दवा खाने जाइए और दुकानदार से कहिए पेट में दर्द है या बुखार है। ऐसा करने पर आपको बिना पर्ची के दी जा सकने वाली दवा मिल जाएगी।
1: लेकिन अगर डॉक्टर के पास जाना हो तो आपको किसी चिकित्सालय या अस्पताल जाना होगा। विदेशी पर्यटकों को चिकित्सा देखभाल उपलब्ध करवाने वाले चिकित्सा संस्थानों की सूची जापान राष्ट्रीय पर्यटन संगठन यानी JNTO की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। वेबसाइट तक पहुंचने के लिए आप फॉर सेफ ट्रेवल्स इन जापान JNTO शब्द से सर्च कर सकते हैं। इसे बुकमार्क कर लीजिएगा।
4: इसके अलावा पास के अस्पताल या चिकित्सालय का पता लगाने के लिए आप पर्यटन केंद्र या होटल के रिसेप्शन पर भी पूछ सकते हैं, और आपात स्थिति में फोन पर 119 दबाकर एम्बुलेंस बुला सकते हैं।
1: लेकिन हम ये कामना करते हैं कि जापान में यात्रा करते समय आपको कभी भी इन सुविधाओं की जरूरत ना पड़े।
4: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
1: अगले पाठ में ताम अपने दोस्तों के साथ साकुरा यानी चेरी के फूल देखने जाएंगी। तब तक के लिए सायोनारा।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 18 है अगस्त मंगलवार रात 11:30 बजे। गुरजिंदर सग्गू और वायला खावानों से सुने समाचार। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौते पर पहुंचने की 60 दिन की समय सीमा समाप्त हो रही है और ऐसे में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को जमकर लताड़ते हुए मीडिया से कहा कि उन्हें जल्दी नहीं है और उनके पास कोई समय सारणी नहीं है। ट्रंप ने सोमवार को फॉक्स न्यूज़ को दिए टेलीफोन साक्षात्कार में ये टिप्पणी की। उन्होंने होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर ईरान के साथ वार्ता कर रहे ओमान को भी चेतावनी दी। ट्रंप ने ओमान को धमकी देते हुए कहा कि अगर वो बाधा डालेगा तो उस पर भी बमबारी की जाएगी। ट्रंप ने यह दावा भी किया कि अमेरिका ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC के साथ गुप्त माध्यम से बातचीत कर रहा है, लेकिन ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी की एक खबर ट्रंप के बयानों का खंडन करती है। इसमें IRGC के एक प्रवक्ता के हवाले से ट्रंप के प्रत्यक्ष वार्ता के दावे को खारिज करते हुए इसे उनकी कल्पना बताया गया है। उधर रॉयटर्स ने एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी के हवाले से बताया कि अगर अमेरिका कुछ ही हफ्तों में अंतरिम शांति समझौता लागू करने में विफल रहा तो ईरान हमले शुरू कर सकता है। अधिकारी ने चेतावनी दी कि ईरान अब अपनी नीति को रक्षात्मक से पूरी तरह आक्रामक बना रहा है और जलडमरू मध्य तथा व्यापक क्षेत्र में तनाव बढ़ाने के लिए तैयार है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का कहना है कि रूस के नियंत्रण वाले 4 द्वीपों में से एक की राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हालिया यात्रा पर जापान की ओर से आपत्ति जताए जाने के बाद उन्होंने रूस में मौजूद जापानी राजदूत को तलब किया था। गौरतलब है कि जापान इन द्वीपों पर अपना दावा करता है। लावरोव ने सोमवार को पत्रकारों से कहा कि जापान ने पूरी तरह से अस्वीकार्य बयान दिया है कि रूसी राष्ट्रपति रूसी क्षेत्र का दौरा नहीं कर सकते। जापान में इन द्वीपों को उत्तरी क्षेत्र कहा जाता है। जापान सरकार अपने रुख पर कायम है कि ये द्वीप जापानी भूभाग का अभिन्न अंग हैं। सरकार का कहना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन द्वीपों पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था। बृहस्पतिवार को जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची सानाए ने बल देते हुए कहा था कि ऐतिहासिक तथ्यों और अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर ये द्वीप जापानी भूभाग का अभिन्न अंग हैं। उन्होंने कहा था कि पुतिन की यात्रा इन द्वीपों पर जापान सरकार के निरंतर रुख से मेल नहीं खाती। जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु ने विरोध दर्ज कराने के लिए रूसी राजदूत निकोलाई नोजद्रेव को तलब किया था। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूत और दामाद जेरेड कुशनर हाल ही में गाजा के हालात को लेकर हमास और इसराइल के नेताओं से मुलाकात करते आए हैं। उन्होंने सोमवार को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। इजरायली समाचार पत्र हारेट्स के अनुसार यरूशलम में हुई ये बैठक 3 घंटे चली। समाचार पत्र के अनुसार बैठक में शांति मंडल के सदस्य भी शामिल हुए। ये मंडल एक बहुराष्ट्रीय इकाई है जिसे ट्रंप ने गाजा में सत्ता हस्तांतरण की देखरेख के लिए गठित किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार नेतन्याहू और शांति मंडल के बीच गहन और रचनात्मक चर्चा हुई। कार्यालय ने बताया कि वे गाजा के निरस्त्रीकरण और विसैन्यीकरण पर एक समूह सहित कई कार्यकारी दल गठित करने पर सहमत हुए हैं। पिछले महीने शांति मंडल ने हमास के निरस्त्रीकरण और इजरायली सैनिकों की वापसी के संबंध में एक रूपरेखा जारी की थी, लेकिन नेतन्याहू ने जोर दिया कि जब तक हमास का पूर्ण निरस्त्रीकरण नहीं हो जाता तब तक इजरायली सेना वापस नहीं हटेगी। कुशनर ने एक दिन पहले मिस्र में हमास के मौजूदा नेता खलील अल हय्या से भी मुलाकात की थी। बाद में ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को बताया कि इजरायल को गाजा पर हमला नहीं करना चाहिए क्योंकि हमास हथियार डालने पर राजी हो गया है।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने उनके वार्ता के अनुरोध पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। ट्रंप ने सोमवार को व्हाइट हाउस में पत्रकारों के साथ मुलाकात में ये टिप्पणी की, लेकिन उन्होंने विवरणों का खुलासा नहीं किया। दक्षिण कोरिया के संबंध में ट्रंप ने असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि दक्षिण कोरिया ने ईरान के मामले में अमेरिका की मदद करने से इनकार किया। ट्रंप ने बताया कि उन्होंने दक्षिण कोरिया से कहा था कि अमेरिका किम जोंग उन से आपकी रक्षा कर रहा है। ट्रंप ने यह भी कहा कि यह अजीब है कि दक्षिण कोरिया ईरान पर सैन्य कार्रवाई में अमेरिका की मदद नहीं कर रहा है। रविवार को ट्रंप ने कहा कि दक्षिण कोरिया के साथ संयुक्त सैन्याभ्यास उत्तर कोरिया को पूरी तरह से अनुचित और शत्रुतापूर्ण संकेत भेजता है। ट्रंप ने यह भी बताया कि उन्होंने पेंटागन को अगले दिन से शुरू होने वाले संयुक्त अभ्यासों का पैमाना काफी हद तक कम करने का आदेश दिया था। जब उनसे पूछा गया कि वे उन आलोचकों को कैसे जवाब देंगे जो कह रहे हैं कि ट्रंप पुराने सहयोगियों के हितों की बजाय विरोधियों के हितों को प्राथमिकता दे रहे हैं, तो इस पर ट्रंप ने बल देते हुए कहा कि वे माहौल को अधिक सुरक्षित बना रहे हैं। जापान के दक्षिण पश्चिमी प्रीफेक्चर कुमामोतो में आए भीषण भूकंप के 3 सप्ताह बाद भी 3,000 से अधिक लोग आश्रय स्थलों में हैं, जबकि कई अपनी कारों या क्षतिग्रस्त मकानों में रह रहे हैं। 28 जुलाई के भूकंप की तीव्रता जापान के भूकंप मापी पैमाने पर सर्वोच्च 7 थी। सोमवार दोपहर 2 बजे तक मृतकों की संख्या 39 थी, जिनमें आपदा संबंधी कारणों से मरने वाले लोग भी शामिल हैं। भूकंप से 31,951 मकान क्षतिग्रस्त हो गए और इनमें से 1,449 पूरी तरह नष्ट हो गए हैं। 70 निर्धारित आश्रय स्थलों में अब भी 3,053 लोग रह रहे हैं। अन्य जगहों पर शरण ले रहे निवासियों की संख्या का पता लगाना कठिन है, जिससे ये चिंता बढ़ रही है कि सहायता की कमी से और अधिक लोगों की मौत हो सकती है। प्रीफेक्चर सरकार नगर पालिकाओं से ऐसे निवासियों के बारे में जानकारी देने का अनुरोध कर रही है ताकि सहायता प्रदान की जा सके। सबसे अधिक प्रभावित शहरों उकी और यात्सुशिरो तथा हिकावा नगर में लगभग 7,380 मकानों में पानी नहीं आ रहा है, लेकिन उम्मीद है कि अगस्त अंत तक जलापूर्ति बहाल हो जाएगी। इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
1: ये है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11,655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें एनएचके वर्ल्ड जापान।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 25वें पाठ में अपनी तबीयत के बारे में बताना सीखेंगे।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम हारूसान हाउस में रहती है। वो बैठक में आराम कर रही है, लेकिन लगता है कुछ गड़बड़ है।
0: तो आइए सुनते हैं 25वें पाठ की बातचीत।
2: तामसान, काओइरो गा वारुई देसु यो। दोशितान देसु का?
3: नोदो गा इताई देसु।
2: ओया ओया, सोन्ना तोकी निवा शोगा हाचिमित्सु यू गा इई देसु यो।
3: काइटो गा इमा त्सुकुत्ते इमासु।
4: तामसान, देकिता यो। हाई, दोज़ो।
3: ओ दाइजी नी।
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: हारूजी में लगे सेंसर ने भांप लिया कि कुछ गड़बड़ है और उनके गालों पर हल्की नीली रोशनी टिमटिमाने लगी। तो हारूजी ने ताम से पूछा,
2: तामसान, काओइरो गा वारुई देसु यो।
1: ताम जी, चेहरा मुरझाया हुआ लग रहा है।
2: दोशितान देसु का?
1: क्या हुआ?
0: ताम ने खांसते हुए जवाब दिया,
3: नोदो गा इताई देसु,
1: गले में दर्द है।
0: तब हारूजी ने कहा,
2: ओया ओया।
1: ओ,
0: फिर हारूजी ने ताम को सलाह दी,
2: सोन्ना तोकी निवा शोगा हाचिमित्सु यू गा इई देसु यो।
1: ऐसे समय में अदरक और शहद वाला गर्म पानी अच्छा रहता है।
0: उसके बाद मिया ने कहा,
3: काइटो गा इमा त्सुकुत्ते इमासु।
1: काइटो अभी बना रहा है।
0: फिर काइटो ताम के लिए अदरक और शहद वाला गर्म पानी लेकर आया।
4: तामसान, देखता यो।
0: ताम बन गया।
4: हाई, दोज़ो।
0: ये लो।
1: उसके बाद मिया ने ताम से कहा,
3: ओ दाइजी नी,
1: अपना ध्यान रखो।
0: अदरक और शहद वाला गर्म पानी बनाने के लिए कद्दूकस किए हुए अदरक को शहद के साथ गर्म पानी में मिलाया जाता है। ये माना जाता है कि इसे पीने से गले के दर्द और खांसी से राहत मिलती है। इसे पीकर ताम को अच्छा लगेगा।
1: आज का मुख्य वाक्य है,
3: नोदो गा इताई देसु,
1: यानी गले में दर्द है। ये वाक्य सीखकर आप तबीयत खराब होने पर अपनी परेशानी बता सकेंगे।
0: इस वाक्य में
5: नोदो
0: का अर्थ है गला। उसके बाद लगा है गा, जो उस अंग के नाम के बाद लगाया जाता है जिसमें दर्द हो, और
5: इताई देसु
0: का मतलब होता है दर्द है।
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि
5: इताइन देसु
1: के अंत में लगे
5: देसु
1: का उपयोग अपनी बात समझाते समय किया जाता है। इसलिए किसी को अपनी तबीयत के बारे में बताते समय भी वाक्य के अंत में लगाते हैं
5: देसु। इताइन देसु
0: में पहले आया है ई विशेषण,
5: इताई
0: यानी दर्द होना, और उसके बाद लगा है
5: देसु।
0: आज की बातचीत में ताम इस वाक्य की मदद से हारूजी को अपनी परेशानी समझा रही है।
1: तो आप भी सुनिए और साथ साथ बोलकर उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
5: इताइन देसु, नोदो गा इताइन देसु।
0: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें कोई अपनी तबीयत के बारे में बता रहा है।
3: どうしたんですか？
6: 頭が痛いんです。熱があるんです。
1: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ।
0: पहले महिला ने कहा,
3: どうしたんですか？
1: क्या हुआ?
0: कोई परेशान दिख रहा हो तो उसकी समस्या पूछने के लिए इस वाक्य का उपयोग करते हैं। ये पूरा वाक्य एक साथ याद कर लीजिए।
1: जवाब में पुरुष ने कहा,
6: अतामा का इताइन देसु,
0: सिर में दर्द है।
5: अतामा
1: का मतलब है सिर, इसलिए
5: अतामा का इताई
1: का मतलब हुआ सिर में दर्द है। पुरुष ने आगे कहा,
6: नेत्स गा अरुन देसु,
0: बुखार है।
5: नेत्स
1: का अर्थ है बुखार, और
5: अरु
1: एक क्रिया है जिसका अर्थ है होना। तो
5: नेत्स गा आरु
1: का मतलब है बुखार होना। इस वाक्य से आप समझ सकते हैं कि
5: देस
1: विशेषणों के ही नहीं क्रियाओं के बाद भी लग सकता है।
0: तो अब ये बातचीत सुन लीजिए और उत्तर दोहरा कर अभ्यास कीजिए।
5: どうしたんですか?頭が痛いんです。熱があるんです。
1: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपके पेट में दर्द है, तो ये बात जापानी भाषा में कैसे कहेंगे? पेट के लिए जापानी शब्द है
5: ओनाका,
1: और दर्द को जापानी भाषा में कहते हैं
5: इताई।
1: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
2: ओनाका गा इताई देस। ओनाका गा इताई देस।
0: अब मान लीजिए कि बहुत देर तक किसी वाहन में बैठे बैठे आपको आपकी तबीयत खराब लग रही है। तबीयत खराब लगना को जापानी में कहते हैं
5: किमोची गा वारुई।
0: तो अपनी बात जापानी भाषा में समझाने की कोशिश कीजिए।
6: किमोची गा वारुई देस। किमोची गा वारुई देस।
1: और अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो मिया की पंक्ति है। आप भी याद कर लीजिए।
2: ओदाइजिनी।
5: ओदाइजिनी
0: का अर्थ है अपना ध्यान रखो। अगर कोई बीमार हो या किसी को कोई चोट लगी हो, तो आप फिक्र दिखाने के लिए इस वाक्य का उपयोग कर सकते हैं। इससे आप ये आशा व्यक्त कर सकते हैं कि वो व्यक्ति आराम करके जल्दी ठीक हो जाए।
1: अब इस वाक्य को विभिन्न लोगों की आवाजों में सुनते हैं।
7: お大事に。お大事に。お大事に।
0: और अब एक बार फिर से सुन लेते हैं आज की बातचीत।
2: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
2: ハルさんの知恵袋。
1: अब बारी है हमारे अंश हारू जी की सलाह की, जिसमें आज हम बता रहे हैं कि अगर आप जापान में बीमार हो जाएं तो क्या कर सकते हैं।
0: जापान में बीमार होने पर क्या करना चाहिए, ये इस बात पर निर्भर करता है कि बीमारी के लक्षण क्या हैं।
1: अगर लक्षण गंभीर ना हो तो आप किसी भी दवाखाने या फार्मेसी से दवाई ले सकते हैं। वहाँ दुकानदार को अपनी परेशानी बताने पर वो आपको सही दवाई दे देगा। तो दवाखाने जाइए और दुकानदार से कहिए पेट में दर्द है या बुखार है। ऐसा करने पर आपको बिना पर्ची के दी जा सकने वाली दवा मिल जाएगी।
0: लेकिन अगर डॉक्टर के पास जाना हो तो आपको किसी चिकित्सालय या अस्पताल जाना होगा। विदेशी पर्यटकों को चिकित्सा देखभाल उपलब्ध करवाने वाले चिकित्सा संस्थानों की सूची जापान राष्ट्रीय पर्यटन संगठन यानी JNTO की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। वेबसाइट तक पहुंचने के लिए आप फॉर सेफ ट्रेवल्स इन जापान JNTO शब्द से सर्च कर सकते हैं। इसे बुकमार्क कर लीजिएगा।
1: इसके अलावा पास के अस्पताल या चिकित्सालय का पता लगाने के लिए आप पर्यटन केंद्र या होटल के रिसेप्शन पर भी पूछ सकते हैं, और आपात स्थिति में फोन पर 119 दबाकर एम्बुलेंस बुला सकते हैं।
0: लेकिन हम ये कामना करते हैं कि जापान में यात्रा करते समय आपको कभी भी इन सुविधाओं की जरूरत ना पड़े।
1: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में ताम अपने दोस्तों के साथ साकुरा यानी चेरी के फूल देखने जाएंगी। तब तक के लिए सायोनारा।

0: そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
1: カイトが今作っています。
2: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
1: お大事に。
3: अब हम इस मुकालमे की वजाहत करते हैं।
4: टॉम की तबीयत कुछ ठीक नहीं। मेज पर मौजूद रोबोट मालिका मकान हारुसान ने अपने सेंसर से ये बात महसूस कर ली और उनके गालों पर हल्की नीली रोशनी जलने बुझने लगी। वो टॉम से मुखातिब हुई।
0: टॉम-सान, खाओइरो गा वारुई देसु यो।
3: टॉम-सान, आपका चेहरा पीला पड़ गया है।
0: दोष्टान देसुका?
3: क्या हुआ?
4: टॉम ने खांसते हुए जवाब दिया।
1: नोदो गा इताई देस।
3: गले में दर्द है,
4: हारुसान ने कहा।
0: ओया ओया,
3: अरे अरे।
4: इसके बाद हारुसान ने ताम को एक मशवरा दिया।
0: सोन्ना तोकी निवा शोगा हचिमित्सु यू गा ई देसु यो।
3: ऐसे वक्त अदरक और शहद का कहवा अच्छा होता है,
4: मियां कहती है।
1: काइतो गा इमा त्सुकुत्ते इमासु,
3: काइतो अभी बना रहे हैं।
4: काइतो अदरक और शहद का गर्मा गर्म कहवा लेकर बैठक में दाखिल होता है और कहता है,
2: ताम-सान, देखता यो।
3: ताम-सान, कहवा तैयार है।
2: हाय दोज़ो,
3: ये लें।
4: मियां ताम से मुखातिब होकर कहती है,
1: ओदाइजिनी,
3: अपना ख्याल रखें।
4: गले में दर्द या खांसी के वक्त अदरक और शहद का कहवा वाकई बेहतरीन है। इसे बनाना भी बहुत आसान है। पिसे हुए अदरक और शहद पर गर्म पानी डालें और जादुई कहवा तैयार।
3: उम्मीद है ये जादुई मशरूब पीकर ताम का गला ठीक हो जाएगा। फिलहाल आज का मकालमा एक बार फिर सुनते हैं।
0: タムさん, 顔色が悪いですよ。 どうしたんですか?
1: 喉が痛いんです。
0: おやおや, そんな時には 生姜蜂蜜湯がいいですよ。
1: カイトが今作っています。
2: タムさん, できたよ。 はい、どうぞ。
1: お大事に。
4: आज के सबक का कलीदी जुमला है, गले में दर्द है।
1: नोदो गा इताई देस।
4: अगर आप इसे याद कर लें तो इसे इस्तेमाल करते हुए तबीयत की खराबी के बारे में बता सकते हैं।
3: नोदो के मानी है गला। इसके साथ हर्फ जार गा लगाया गया है क्योंकि दर्द गले में है, यानी जुमले का मौजू गला है। और इताई देस के मानी है दर्द है। आज का नुकता इताई देस में पोशीदा है और वो है देस। किसी को अपनी तबीयत की खराबी के बारे में बताने के लिए जुमले के आखिर में न्देस इस्तेमाल किया जाता है। इताई न्देस, ई इसमें सिफत इताई यानी दर्द के साथ न्देस लगाकर बनाया गया है। आज के मकालमे में ताम ने हारुसान को अपनी तबीयत की खराबी के बारे में बताने के लिए ये जुमला इस्तेमाल किया है।
4: तो सामीन, अब सुनिए और दोहराइए।
1: नोदो गा इताई देसु।
4: जी सामेन, यकीनन आपने जुमलों को उम्दगी से दोहरा लिया होगा।
3: अब सेहत के दीगर मसाइल से मुतालिक एक मकालमा सुनिए।
1: दोष्टान देसु का?
5: अतामा गा इताई देसु। नेत्स गा आरु देसु।
3: अब इस मकालमे की तशरीह।
1: どうしたんですか?
4: क्या हुआ?
3: ये जुमला किसी से उसकी तबीयत की खराबी के मुतालिक पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दो के मानी है कैसा या क्या। ये बहुत मुफीद जुमला है, इसे याद कर लेना बेहतर होगा।
5: आतामा का इताई देस।
4: सर में दर्द है।
3: आतामा के मानी है सर, चुनांचे आतामा का इताई का मतलब हुआ सर में दर्द।
5: नेत्स गा आरुन देस।
4: मुझे बुखार है।
3: नेत्स के मानी है हरारत या बुखार। आरु एक फेल है जिसका मतलब है होना, चुनांचे नेत्सुगा आरु का मतलब हुआ बुखार होना। इस जुमले से आपको अंदाजा हो गया होगा कि इसमें सिफत की तरह फेल के बाद भी न्देस लगाया जा सकता है।
4: अब मकालमा सुनिए और जवाब दोहराइए।
1: दोष्टान देसु का? अतामा गा इताई देसु। नेत्स गा आरु देसु।
3: अब सेहत के कुछ और मसाइल के साथ मशक करें। मसलन आपके पेट में दर्द है तो ये बात किस तरह कहेंगे? पेट की जापानी है
1: ओनाका, ओनाका।
3: और दर्द को कहते हैं
1: इताई, इताई।
3: تو سامعین کوشش کریں. اور اگر آپ کو متلی کی کیفیت محسوس ہو رہی ہو تو کیسے کہیں گے؟ چکر یا متلی جیسی کیفیت کو کہتے ہیں
1: کیموچی گا واروئی. کیموچی گا واروئی.
5: کیموچی گا واروئی دس. کیموچی گا واروئی دس.
4: اب آپ طبیعت خراب ہونے کی صورت میں دوسروں کو آسانی سے بتا سکیں گے.
3: اور اب اضافی معلومات کا کارنر. آج کا لفظ مکالمے میں میاں نے استعمال کیا ہے، اسے یاد کر لیں.
0: اودائی جینی.
3: اودائی جینی یعنی اپنا خیال رکھیں. یہ کسی مریض یا زخمی شخص سے کہا جاتا ہے. یہ ایک طرح سے مریض کے جلد ٹھیک ہونے کی توقع کا اظہار ہے.
4: اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے.
2: اودائی جینی.
6: اودائی جینی.
7: اودائی جینی.
4: سامعین اب آپ کی باری ہے، تو سنیے اور دہرائیے.
3: اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں. اس حصے پر خصوصی دھیان دیں جس میں تام اپنی طبیعت کی خرابی کے بارے میں بتاتی ہے.
0: تام-san, kaoiro ga warui desu yo. Dou shitan desu ka?
8: Nodo ga itai in desu.
0: Oya, oya. Sonna toki ni wa shouga hachimitsuyu ga ii desu yo.
8: Kaito ga ima tsukutte imasu.
2: Tam-san, dekita yo. Hai, douzo.
8: O daiji ni.
0: Haru-san no chiebukuro.
4: اب ہاروسان کی زنبیل کا کارنر. آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جاپان میں بیمار ہو جائیں تو کیا کرنا چاہیے.
3: ہیرا، آپ کی طبیعت خراب ہو تو آپ کیا کرتی ہیں؟
4: اس کا تعلق بیماری سے ہے. معمولی مسئلے کی صورت میں میڈیکل سٹور سے دوا لے لیتی ہوں.
3: واقعی بیماری کے علامات معمولی ہوں تو میڈیکل سٹور سے دوا لینا آسان ہے. سٹور کے ماہر ادویات کو پیٹ میں درد یا بخار وغیرہ بیماری کی علامات بتا کر ڈاکٹر نسخے کے بغیر دوا لی جا سکتی ہے.
4: لیکن اگر ڈاکٹر کو دکھانا ضروری ہو تو کیا کیا جائے؟
3: ایسی صورت میں متعلقہ شعبے، مثلا جنرل فزیشن یا آنکھ یا کان وغیرہ کے شعبے کے حامل کلینک یا اسپتال جانا چاہیے. معائنے کے بعد ڈاکٹر دوائیں تجویز کرے گا. ڈاکٹری نسخہ دکھا کر میڈیکل سٹور سے دوا لیں. حکومت جاپان کے شعبہ سیاحت JNTO کی ویب سائٹ پر ان طبی اداروں کی فہرست موجود ہے جہاں غیر ملکی سیاحوں کے معائنے کی سہولت موجود ہے. سائٹ تلاش کرنے کے لیے فار سیف ٹریولز ان جاپان JNTO سے سرچ کریں. اس ویب سائٹ کو محفوظ کر لینا بہتر ہوگا. اس کے علاوہ سیاحتی مراکز یا ہوٹل کے استقبالیہ کاؤنٹر سے بھی قریبی ہسپتال کے بارے میں معلومات لی جا سکتی ہیں. اور کسی ہنگامی صورتحال میں 119 پر فون کر کے ایمبولینس منگوائی جا سکتی ہے.
4: 119 میں یہ نمبر یاد رکھوں گی.
3: خدا کرے کہ کبھی یہ نمبر استعمال کرنے کی نوبت نہ آئے، لیکن بہرحال اسے یاد رکھنا مفید ہوگا.